सगल विसूरे। पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया। नव निद सिद्ध रिद्ध दिनी करते तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम। दात सवाई निखुट न जाई अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख न नेड़ आया। शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी

चारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़नरखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग।

हे रे मन चितवै उद्दम जा आहर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ।

नमस्कार तिसे ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रण को पलमो बद कियो घट

हरा। जब आकर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहतर सब हूँ। जेते बदन सिरसब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत बेद

कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती। तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी उतपुज खान बाहर रच दीनी। कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संकरे।

दोख ते रहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्त जप पए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांचत फल पावे सोई दुख ना तिसे व्यापत कोई अड़िल

व्रत परिया चौन चौन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दऊ चल्लै राखा महे आवर ना दलै तुम मम करो सदा व्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान आप

प्रथम धरो भगवत कुवत्याना बहर करो कविता बेदनाना किशन जथा मत चरतर उचारो चूक हुए

समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाव तह निकट न आवे बिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई समत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधार।

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन कर दे आप अल्लाह की माफी बख्श ने। भाई सुरेंद्र सिंह जी लुधियाने वाले आप जी लड़ीवार पुत्र बाणी कथा राही जोड़ेंगे, उन्होंने पास प्यार से सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

सत्संग सतगुरु मेरा अमृत करे, सतगुरु दया करे, सतगुरु कृपा करे, रहमत का मीह वरसावे ते सानू अपनी सेवा विच अपने सिमरन विच ला लवे। ऐसी अरदास सारे करिया करो, सतगुरु नाम दी दात बख्शे, साडा जीवन सफल हो जाए, साडियां घड़ियां साडे सवास जिहड़े अजाई जा रहे हैं ये सफल हो जाए। असी अपने जीवन दियां चंद घड़ियां चंद मिनट सतगुरु जी दे लेखे ला दीए, क्योंकि असी जीवन में सारा जीवन कमां कारां विच ही उलझे रहिंदे हाँ। परमेश्वर का भजन करन दा साडे कोल समां नहीं, असल विच इह मनुखा जामा ते प्राप्त हो भजन करन वास्ते होया है। सो सतगुरु मेरा अमृत करे सारिआं नूं, गुरसिखी नाम की दात बख्शे। इस तरह तुसीं जुड़ के गुरु की कीर्ति करते रहो, गुरु की कीर्ति सरण करते रहो, अपने स्वास सफले करते रहो। आओ नन साहब पढ़ के आपां दीवाना दी समाप्ति करांगे।

यह सुख मांगर मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दयागर।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

हर रंग प्रभ कह सिमरन रिद्ध सिद्ध नाम निध प्रभ कह सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कह सिमरन जब तब पूजा प्रभ कह सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कह सिमरन तीर्थ सिस नानी प्रभ कह सिमरन दरगह मानी प्रभ कह सिमरन हुए सुफला प्रभ कह सिमरन सुफल फला से सिमरह जने आ

रह चले जह मुस्कल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम को पा हर को नाम कोड पाव पर हरे गुरुमुख नाम जप मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाह करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निहतर है।

आपन कर कर्म। तू ठाकर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम राम तू चेते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम रह सूत्र धारी, तुम ते हो सुभाग्यकारी। तुमरी गद में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक

देव अष्टपदि जिह प्रसाद शक्ति हे अमृत खाए तिस ठाकर कह रख मन माहे। जिह प्रसाद सुगंधर तन लावे तिस कव सिमरत परम गत पावे। जिह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मणि अंदर। जिह प्रसाद गृह संग सुख बसनाड़ पैर सिमरह तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जिह प्रसाद सुख से जो सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिह प्रसाद सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने। जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जपत दरगे मान पावे नानक पत सेती कर जावे। जिह प्रसाद अरोग कंचन देही लेव लाव तिस राम स्नेही। जिह प्रसाद रवो लारहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे

देह प्रसाद हस्त कार्य चल है, देह प्रसाद संपूर्ण फल है, देह प्रसाद परम गत पावे, देह प्रसाद सुख सह समावे, संप्रभ त्याग बरकत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, देह प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल मनो विसार, देह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू दाग जाप, देह प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे, देह प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच, देह प्रसाद सब की गत

तह साधक संग बस थान उचे साधु कै संग महल पहुचे साधक संग दिले सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै गुरबान साधक संग सब कुल उदाहरे साध संग साजन मीत गुटम निस्तार साधु कै संग सब तन पावे जे तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध के संग नहीं कस काल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां सुहेला साध संग बिछरु तो हर मेला जो इच्छे सोई फल पावे साध कै संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाव साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निहतरै साध के संग लगे

राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सिर पे उपाय, कई कोट पास बृख निव जाए, कई कोट पवन पाणी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि अर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान विंदर सिर छत्र।

खाव खाव मरे, बिना संतोष नहीं को राधे, बिना संतोष नहीं को राधे, सुपन मनोवर्थ वृथे सब का दे, नाम रंग सर्व सुख हो, बड़ भागी किसे प्राप्त हो, करण करावने आपे आव, सदा सदा नान कर जाव, करण करावन करने हार, कह हाथ कहाँ विचार,

सदा सदा बसे हर संग सह सुपाए होवे सोए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस देव जित हिमाय समाये हुए सुख निदान उन्हू बनाए आपस को आप दीनो मान नान प्रभ जने को जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ

पेटत संग्राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मान संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरु ख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख है होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तह लय मिलाए जिस भाए कुष्ठ दिनेक सतपुरुख पूर्ण वेख

डूबे सियाने। हर की भगत करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राख मन बाहे।

0: सुखमनी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद

तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सू

केते रतन संबंध केतिया सुरती सेवक केते केते केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान पर छड तथा नाद विनोद गुड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तथा घाटत घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पछे पछताहे तथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तथे घड़िए सुरां सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तथे होर ना कोई होर तथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहे भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करहे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल।

जाए, सहसे जीव मलिन है कत संयमित होता जाए, मन तो भव शब्द लागो हर सिंह रहो चितलाए, कहे नान गुर प्रसादी साहब बजाए सहसा इब जाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले तिने जन्म जुए हार, ए तशना वड्डा रोग लगा मरन मनो में सारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेता लिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करने कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खट्टिया भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हिरदय ते आय अंतरयात मैं समाले, आप छड़ सदा रह परने गुरबिन अबर न जाने कोए, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुरते बेमुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होरथ कोई पुछो वेखियां जाए, अनेक जूनी भरमे आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सर बाणी, जिनकाओ नदर कर्म हो बै हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहिंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आँख बखाणी, हर हर नित करे रसना कहया कशुना जाणी, चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची है बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे सुन दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सख्त आप उपाय कै करता पे हुक्म रताए, हुक्म वरताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक स्यों लिबलाए, कहे नानक आप करता पे हुक्म जाए, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजो ततै सार ना जानी, तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहाणी, गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए, जिसनु अंदिन हर लिब लागे जागत रहण विहाणी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो में सारी है, मनो क्यों में सारी है एवड़ दाता, जे अगर मैं आहार पहुँचावे उसनु कहे पोहे ना सकी, जिसनु आपनी लिब लावे आपनी लिब आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है, कहे नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो में सारी है। जैसी अगर उधर मैं है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जही करता है खेल रचाया, जात सभाणा था जमया परिवार भला पाया, लिब छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया, कहे नानक गुरु प्रसादी जिना लिब लागी तिन विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसे मिट्टों रहे लोग मिल लाए, ऐसा सतगुरु में जे मिला तिसनु सिर सौंपिए बिचों आप जाए, जिसदा जीव तिस मिल रहा है हर वसे मन आए। हर आप अमुलक है भागत।

मारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सिज जाए एह तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरा कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सिज जाए औ कुर्बान जाओ मेहरबाना

तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावे आपे ही रावे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावे आपे ही रावे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसां ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हाजूरी विच सजी गुरु स्वरूप साध संगत जी बहुत ही वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तों गुरबाणी दे मिठड़े कीर्तन सरवण करके आनंद प्राप्त कर रहे सो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जो आज अमृत वेले श्री मुख वाक बख्शिश कीता है आज दे ए पवित्र बचन पहले पातशाह वड्डे सतगुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दी पवित्र रसना तों उचारण कीते होए तिलंग राग अंदर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र पावन अंग 721 722 ते दर्ज हन सुभायमान हन। विचारधीन शब्द दियां रहाउ वालियां पंक्तियां विच हजूर दा फरमान है हों कुर्बाना जाओ मेहरबाना हों कुर्बाना जाओ हों कुर्बाना जाओ तिना कै लैण जो तेरा नाओ लैण जो तेरा नाओ तिना कै हों साध कुर्बाना जाओ। गुरुस्वारी साध संगत जी चार बार रहाउ वालियां पंक्तियां विच कुर्बान शब्द हजूर ने वरत्या है जपन वालियां तो चार बार कली रहाउ वाली पंक्ति विच चार वरी परत परत के मुड़ मुड़ के सतगुरु कुर्बान जांदे ने सदके जांदे ने हे मेहरबान मैं सदके जांदा हां मैं सदके जांदा हां मैं कुर्बान जांदा हां मैं कुर्बान जांदा हां उन्हां तों जिहड़े तुहाडा नाम जपदे ने। भाव स्पष्ट है बहुत ज्यादा कंप्लीकेटेड अल्फाज नहीं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जपण वालियां तों सदके जपण वालियां तों कुर्बान जा रहे ने।
क्योंकि जपण वालियां दी अवस्था जपण वालियां दी रीसाई जपण वालियां दी पहुंच कोई जपण वाला ही समझ सकता है। किसे मनुख ने किसे फील्ड विच पीएचडी कीती होवे ते मेरे वर्गा किसे पट्ठे ते इटां वास्ते मिट्टी गुन रहा होवे ते ओ उहदे कोल जाके खड़ा होके कहे भी मित्र मैं पीएचडी कीती है, उहनूं विचारे नूं पीएचडी दी फुल फॉर्मेशन भी नहीं आउंदी, उहनूं की फर्क पैंदा, ओह कहिंदा कीती रख। पर जिन्हें कोई मशक्कत कीती है, कोई पढ़िया है, बहुता नहीं पढ़िया भावें थोड़ा ही पढ़िया है, उहनूं जदों कोई कहिंदा मैं ट्रिपल एमए आ, मैं एम फिल कीती है, मैं पीएचडी कीती, उहदा मत्था ठणकदा है, भाई ये बड़ी मेहनत दा काम है। जिंदगी दा अद्धे तो ज्यादा हिस्सा इस मशक्कत विच गुजर जांदा है। वाहिगुरु समत बख्शे सानू। मैं अर्ज कर रहा सां जपण वालियां दा कदर जपण वालियां तो सदके जपण वाले जांदे ने, जिवें गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहे ने, इसे प्रकार एक थां ते भगत कबीर जी भी जपण वालियां तो बलिहार जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहब च जदों असीं बचन पढ़ने आ किसी भी राग की शुरुआत हुंदी है ते सब तो पहला गुरु नानक साहब दे बचन आउंदे ने। क्रमवार पांच गुरु छिया गुरुआं दी नौवें पातशाह दी बाणी दर्ज हो जाएगी, फिर चलो अगले कोई लंबेरी बाणी अष्टपदियां ने छंत ने ओ हुण जदों ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा भगतां दी वारी आवेगी ते सब तो पहला भगत

गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात साहि दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोविंद नाव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके भुलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वण के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमजिठ कीता। तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान तरके भुलना जी। जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चुरवाए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी सिदक के सां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कुमारी।

राजा पंतेरा को न सुझानू अर का नाम च नाल पछानू जय महाप्यान तब तब काम तहर के नाम के तुम ऊपर छाम जय त्रखा मन तुझे आकर खै तै नान कर अमृत बर खाए।

समात हरजन केर नाम निदान पर ब्रह्म जन के नो दान मंथन रंग रत रंग कै नान जन कै व्रत भव कैर कै नाम जन को मुगत जोग तर कै नाम जन को त्रिवत भोगत।

गोस्पदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास करम धर्म करया सुगल त्याग मन मधे फिरया।

कुमार नौ खंड पृथ्वी पर चरती वे मावदा तपे सुरती वे अग्नवाय होमत परान कनक स्वर पुम दान न्यौली कर्म करे बवा संजर मारे संयम साधन कृम कर से घटावे तो पे होमे बैल न जावे हर के नाम संसर कथना है नान गुरमुख नाम जपत कत पा है मन कामना तिर दय छुटाय कर घुमाना मत दे हटाए शोध करे दिन सर रात मन की मैल न तंते जात उस दही को बो साधना करे मन ते कब होना बिख्या टराए जल तो है बो दे अनित शोध काव एक पीत मन हर के नाम की मैं मऊच नानक नाम दर पत बहुमूच बहुत सियाण जम का प्याप जतन कर दृसन्ना त्राप बेखा नेखा गनी भुज गोट पाप दरगनी सिजय छोड़ सुना ही ओ प्याल मोह ब्याप माया जाल अवर कर तू सगली जमुना ने गोविंद भजन बिंतल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले स्वाय सुभाए चार पदार्थ देखो मांग साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सा संग होमें छोराय जे को जन्म मरण ते डराय सा जना की सरणी पराय जे जन को प्रभु दर्श प्यासा नारे ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संजा कमटे अभिमान पद को जो जाने नीचा सौगनी सब चय ऊंचा जका मन हो सगल केरी न हर हर नाम तिन कट कट जीना मन अपने देवरा मिटाना बेख सगल श्रेष्ठ साजना सुख

महान करण करावनहार स्वामी सकल कटा के अंतर जामे अपने गत मन जानो आपे आपर संगा प्रवराते तुम रियत तुम ते हो नानक न जान सकोय सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सकल क्रिया में उत्तम क्रिया स्वास संग दुर्मत मल हरिया सकल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सकल बानी में अमृत बानी हर को जासो रसन बखानी सकल थान ते उत्तम थान नानक जे कटवसे हर नाम सलोक निर्गुण आर एनया सो प्रसदा सुमाल जन किया तुच रख नानक नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत बरानी कौन मूलते कौन दुस्ताने जिन तो साज सवार स्वीकारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिद प्याओ पर साग सैन मुख प्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे बुसल्यो तव नानी से जय दे प्रसाद धरियो ओ पर सुख बस है सुत बरात मीत बनता संगा सहजे पर साई पीवे से चल जला सुखदाई पवन पाप कामुला जे पर साप गया सब रसा सगल समग्री संग सास बसा दीने हस्त भाव करने तरसना तसे त्याग और संग रचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नान काण लियो प्रव्यापे आदंत जो रख नहर तिसो प्रीत न करे गवार जा की सेवा नवनत पावे तासो मुड़ा मन निलावे जो ठाकर सा सदा हजूरे चंको अंदा जान तुदूरे जा के टहल पावे दरगा मान तुस बिसार मुदे जान सदा सदा ये भूल नहार नानक राख नहार अपार रतन त्या कौडी संग रचै स्वाच छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सुअसर कर मान जो होन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हर चंदन लेप उतारे तो गर्त प्रीत वसम संगोय अंध कुम में पद बिकराल नान काल्यो प्रभ दयाल करतुत पशु की मान जा लोक बचारा करे दिन रात बाहर पे खंतर मल माया छप सुनाए कज करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतरगन बाहर तन स्वाओ कल्पा

मैं दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा धराय संग साहि सुहावे न चीज जो बैराई तां सुप्रीत बलवै के कृपा पितर बसे रंद केल मै रंग रसै दृढ़ कर मन प्रतीत काल न आवै मूढ़ चीत।

सकल समग्री तुमरे सुतरतारी तुम ते हो सुभाग्यकारी तुमरे गत में तुम्हें जाने नानक दास सदा कुर्बानी स्वरोग देन हार प्रभु छोड़ के लागे आंसुआए नानक कहु न से जई बिन नावे पत जायस्पदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस कारण बैखोट गवावे एक पीना दे दस पी हर ले तो मुड़ा कहु कहाव करे जेठा कर सो नाही चारा ताको कि जय सदनम सकारा जाखे मन लागा परमेठा सर्व सोगता हो मन उठा जिस ने अपना हुक्म नाया सर्व सोग नानक तिन पाया अगंत सा अपने देरा काल बित बरते आनंद उलास अपने मन कछ बार साले अज्ञानी मन रोष करे अपनी भरती सा भेख हो बरस का विश्वास न हो जिसके बस सा गह रखे प्रभु की आज्ञा मान मत है उससे चौकन करे निहाल नानक सायु सदा दयाल अनक पात माय के है सर्प हो जान अनित बिरखि चाय सुरंग लावे बिन छो मन पछतावे जो दुसा सुचारण हार लपट रहे चैन दंडार बटाओ सो जो लावन ताके हाथ न आवे के मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आपले लाई मिथ्या तन तन कुटाम सुभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो बंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ति असभ असरा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान मिथ्या पशु प्रकृत गुमान अचिर भगत साध के स्वरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रम पर निंदा सुनया मिथ्या हस पर दर्भ को हरिया मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या धन्य पर बकार मिथ्या वास ले बेकारा बिन भुजे मिथ्या स्वप सफल दे नानक हर नाम ले बिरथि सकत की आरजा सच बना कह हो सुचा बिरथा ना बिना तन अंध मुखावत कह दुर्गन बिन सिमरन दिन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाय गोविंद भजन में बिरथ सब काम ज्यो कृपण के नार्थ धाम धन धन ते जन जे कट बस्योर नाओ नानक तंक बल बल जाऊ रह तवर कछवर कमावत मन प्रीत मुखो गण लावत

आप जपाए जप सुनाओ आप गवाए स्वर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होय प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होय श्रवण धान प्रभु तेरी माया आपका आपो कछु न किन हूं लाया जित जित लाभ हो तित लगाए हर नाथ नानकिन क्या कछु न हाथ स्वरूप।

सरस्वती साधक संघम उज्ज्वल होत सा संगल सगलिक होत साग संघ उठे अभिमान साग संघ प्रकट सो ज्ञान साधक संघ बुद्ध प्रभ नेरा सा संघ सब होत नेरा साग संघ पाए नाम रतन साग संघ एक ऊपर जतन साधक महिमा वर्ण कौन पराने नानक साग शोभा ब्रह्मा सुमाने साग संघ गोत्र मिले साग संघ सदा पर फुलाय साधक संगा वह बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग सब की रैन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कथुम तावाय सा संग सच मन पावा साग संग माया चय पन्ना सा संग नानी प्रभ सो प्रसन्न

सा प्रभु बनाए साग संग न कत्म कब हुतावे साथ कह संग सदा सुख पावे सा संग बस गोचर लह साधु के संग अजर सह साग संग बस थन ऊचै साधु के संग महल पहुचै।

निहाल। साज का संग लोखत हर साग संग नरक पर हर साग संग इहा उहा सोहेला सा संग बिचर थर मेला। जो इच्छा सोए फल पावे साग संग न बिरथ जावे पार ब्रह्म साध रस वसै नानक उदर साध सुन रसै। साज का संग सुनो हर नाव सा संग अर्ख गुण गाव साग संग नाम ते बिसर सा संग सर्पण निसर साग संग लगे प्रमिठा साधु कै संकट कर डिठा। सा संग पै आज्ञाकारे सा संगत पै हमारे साग संग मिटे सब रोग नान सा पिटे संजोग। सा के महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बखियान है। सा को उपमा ते गुण ते दूर सा को मारे प्रभुर सा के शोभा का नाही अंत सा के शोभा सदा बेअंत। सा के शोभा उचे उचे सा के शोभा समुचे मुचे सा के शोभा साब ने आई नान सा प्रभेद न पाए सलोक। मन साचा मुख साचा सोए अब न पेख्या किस बन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदि। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेव जैसे जल में कमलाले। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दो जैसे सुर सर्व को सोग। ब्रह्म ज्ञानी कहते समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कहते हृदय एक जम सदा को खुद को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी कह गुलाओ नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रगा जैसे धरियो पर्याका। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सब से नीचे। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानी चिन्ह प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल केरी ना तमृत ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब पर माया ब्रह्म ज्ञान कज बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन तय मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानी ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

केवल ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानी, ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्मज्ञानी सबश्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुख जगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्मज्ञानी

जैसे लिखा तर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास का नाम सत राम दास आत्म राम तदरी आया दास संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगा परवान अपने दास को आप कृपा करे ते दास को सब सो जी पर सगल संगातम और दास

तैसा स्वर्ण तैसियो सुमाटे तैसा अमृत तैसे विखाटे तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताय साय जुगत नानक को पर कहिया जीवन मुक्त।

गृहस्पति कई कोट होय पुजारी कई कोटाचार बिहारी कई कोट पे तीर्थवासी कई कोट परम पर मैं उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आव है नान करते कांत न पाव है कई कोट पय अभिमान कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आवेगा तुमने कोर कई कोट पर दर्व खोर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया शर्मा है कई कोट पर दे प्रमाण जद लाभ तत् तत् लगना नान करते के जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखे सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट शशियर सुर नखत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपन

वैसोई करे अनुदान दुख्याम रत जानत अपन आप वत पर मैं भोला ददतावे नुकमें चार कुंड फिर आवे कर कृपा जैसे अपने

गुर प्रसन्न नानक सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोहन तारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबू कीट हसब तंग होए जियान जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे तिवन चावे जो तुझ पावे सोई होए नानक दूजा वरना कोई कबू सा संगत पावे सतां ते बहु न आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश सन का नहीं विनाश मंथन नाम रत एक रंग सदा बस पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जलाए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु के सद कुर्बान।

बृहस्पति जिसके अंतराध में मांसो नर्क पाती हुआ सुवांडो जाने में जो ब्रह्मांसो वत विचार का जंत आपस को कर्मंत कहा वह जन्म रह बो जोन परमा वह तान पुमका जो करा गुमान सो मूर खंडा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक क्या मुक्ता के सुख पावे तनमंता हुए कर कृपावे तन समान का संग न जावे बहुलस्कर मान को परे करे आस पर पवित्रता कहे बिना सबते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पशुमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तुझ करे खुआरी गुरु प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान सो जना ने दरगाह परवान कोट कर्म करे होतारे शरम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नर्क स्वरूप फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्मा नहीं द्रवा है दरगाह को कैसे गावा आपद को जो भला कहा वह तिसे भला ही निकना वह सर्व के रंजा का मन हो कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लोग जाने मुझे खत हो तब

प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लख कोट तावे तृप्त नावे माया पाछे पावे निक भोग भिख्या के करा न तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजे सब नम्रो अर्थ वृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागे कसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हर इसके हाथ कहा विचार जैसे जिस करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो कुछ गुनो सो अपने रंग सब ते जोर सब हूं कै संग भुजै देख्या करे बबे का पै अनेक मरे न बिन से आवे।

सब कुछ वर्त जिसका किया जैसा करे तैसा कुछ किया। अपना खेला करने हार दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तैसा अपन नाम दे बिड़पा की नानक जन सहे सो लोग ताजो श्यान पसुर जनो।

बृहस्पति मानव कीट एक पृथ्वी सब जान देवन को एक भगवान जिसका दिया राय गाय बोन रचना ला के आये मारे रखे को आ मान के कुछ नाई हाथ तिसका हुकम बोई सो कोय तिसका नाम रंग कंठ पुरो सिमर सिमर सिमर प्रभ सोये नानी विघ्न लागे कोई उत्तर मन में का निरंकार कर्म मेरे सत व्यवहार निर्मल रस नामृत पियो सदा सोहेला कर ल जियो नैनो पे ठाकुर का रंग सा संग मेरे से सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दरगह नानक उज्जवल मथा बड़पा के ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाये राम नाम जो करह विचार स्वेतन वंद गणे संसार मन तन मुख बोले हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक बचाने तुत के सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नितने निरंजन जाने गुर प्रसाद अपन आप सुझ जाय तिसके जानो तृष्णा बुझ जाय सा संग हर हर जस कह सर्व रोग ते ओहो हर जन रहत अंदर कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोए निर्वाण एक उपर जन की आशा तुझे कटिया जम की पासा पार ब्रह्म के जिस मन भूख नान तिसे न लागे दुख जिसको हर पाव मंच त्यावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जब अपना कृपा करे सो सेवक को किस ते डरा जैसा सत्य सदृष्टाया अपने कार दुनिया सुमाया सोद सोद सोद सिद्धिया गुरु प्रसाद सब जय जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असूल नेक जन्म नेक तुमर अपन चलता भी करे आवन जम दृष्ट दृष्ट आज्ञा करी धारी सब श्रेष्ठ व्यापे आप सगल में आपन जुगत रह थाप थाप अविनाशी ना ही कुछ खन तारण तार्यो ब्रह्मांड लाख पे प्रभु प्रताप आप जय पैता नानंदा जन प्रभु जाता सो सो बावन सगल संसार उदरे जन मंत्र प्रभु के सेव सगल उदाहरण प्रभु के सेव दुख विसारण पे में ले कृपाल गुरु का सब जब पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जस नौ कृपा करह बड पागे नाम जत पाप है विश्राम नाने तिन पुर को उत्तम कर मान जो किछ कर सुप्रभ के रंग सदा सदा बस हर संग सह सुभा हो सोए करने हार पछाण सोए प्रभ के आगे जन मीट लगाना जैसा

बलहार अस्पति टूटी गण हर गोपाल सर्व जिया पे प्रतिपाल सगल की चिंता जसवन माहे जस व्यर्था को नाहे रे मन मेरे सुदा हर जा पवना से प्रवया पे आपन किया कछुना हो जसो प्राणी लोचे को तस्बन नाहे तेरा किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपन तो नाय मोहे प्रभु के जो

धन गवार जस गुरु प्रसाद तुट हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को मो थम थम त्यो गुर का शब्द मन सुथमन जो बखान नव चढ़ तर प्राणी गुर चल नक्त निस्तर जो अंधकार दिव्य प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो विगास जो महाउद्यान में मारे पावे तुम साधु समय जो प्रटावे तुम संतन की बाछो तुर नानक अर लोचा पूरे मन मोर काहे बिल्लाए पुर लिखे का लिखिया पाए दुख सुप्रभु देवन हर वर त्याग तो सह चितार जो कछ करे सोई सुकुमान।

जप जन सदा सदा निराणी सब त्यो निर्मल करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नाने सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की परती ते जनया वे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया चालो जा कै हृदय को हो सत्कर्ण संहिता खीर सत हृदय सत मुख सत सच आकार सच वर्त सच पसार पार ब्रह्म जन स

ध्यान नाम कतारे आकाश पताल नाम कतारे शुक्लकार नाम कतारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्र सुन स्वरण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत्य जाका सत्य स्थान पुरुष सद केवल प्रधान करतूत सत सजा की बाणी सतपुरुष समय सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत्योत पत सत करने निर्मल निर्मले जिस बुझाए तिस सब पली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जा कर प्रवेश सत नित बुझ जय कोय नाम जवता की गत होए आप सत किया सब सत आप जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सुकरने हर अवर न बूझ करत विचार करते कीमित न जाने किया नान जोत पावे सुवर्तिया विष्णु विष्णु पै समाज

लागे जन का संग क्लेव लागे गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसन्न नानक फल पावे स्वरूप आद सच जोगाद सच है पे सच नानक होसे पे सच अष्टपदी चरण सत सफर सुनहार पूजा सत।

बस हो जाने पर अपने का हुक्म बचाने तिथकी महिमा कौन बखाने तिथका गुण का एक न जानो आठ पैर पर बसा जू रखो नाने से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु छाता सर्व सो जन सर्व सो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शा पावे टावे और सियानम सगले चार ते जन के तु से बाला गामन जान हो भी तेरा नान ते जन के पूजो हो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सुख उदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिख करा प्रतपाल सेवको गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल हिरा गुरु बचनी हर नाम उचरै सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकार से हटे सतगुरु सिखो नाम धन दे गुरु का सिख बड़ भागी है सतगुरु सिखा हर पर सुवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल सुमारे गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे आपस को कर गौ छना जनावे हर हर नाम ब्रज सत जावे मन बिच सतगुरु के पास सेवक के कार्य राज सेवा कर तो इन काम तिलको और प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जो साफ करे नानक सो सेवक गुरु की मात ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सतगुरु सुरदय हर नाव अनक बार गुर को बल जाओ श्रवण धान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म कैप नहीं कज परम सहस्यान बलैना जाइए नानक सगुरु पागी पाइये सफल दर्शन पे कत पौनीत पार स्वत चरण का निर्मल रीत पेट संग्राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दरगा का वह सुनकर वचन करना गाना मन संतो का तुम बतिया ने पूरा गुरु आख्यो जा मंत्र अमृत पिखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जे वैकुंठ सता नेक सत पुरु पूर्ण बाबे का बोलना पशु प्राणी अगम अगोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई था की कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन कर रहा चरण कमल हृदय सिमर सर परे हारी सतगुरु अपने नानी जिस प्रसाद आशा प्रभु अपने एहो अमृत पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सोए इस पुर का नाई करे बिना जा के अमर भक्त गुण दास आठ पैर हर का नाम ले सचव दे सेवक दे मोहमाय के संग न ले मन में रखे हरे हरे एकांत कर दीपक प्रगा से नानी परम दुख तय तेना से तब तुम्हें ठंड वरताई अनद व्यथ को नाठे पाई जनमन के मिटे अंदर से साधु के पूर्ण बदे से पहुँ चुका निरपो है बस सकल ब्याज मंत्र करना से जिका सौदन कृपा दारी सा संग जपना अमरारी थित पाए चुके ब्रह्म गावन न सुनना न कर जस सर्वंदर गुण अवसर गण प्यो ही कला तार जिन सगली मोहि अपने चल प्रभा बनाए अपने कीमती अपे पाए बंधु जाना ही खोए सर्वंदर अंतर रेखो सोए ओत पोद्र व्या रूप रंग पे प्रगा साध के संग राच रचना अपनी कल तारी इनक बार नानक बलिहारी सुलोक सा

पदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पा समित बसार चरण कंवर दमाय उतार करण कारण सो पर समर हाथ दृढ़ कर गहो नाम हर वाथ एह धन संतो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आसरा को मर माय सर्व रोग नानक मिट जाय जिस तन को चार कुंड उठता है सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख नित बामित सो सुख साधु संग प्री जिस बा को कर भली करनी सा सोभा पधर की सरणी अनेक पावे रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व धन मेरे नाम ने धन जप नानक दर गए परवान मन पर बुद्ध वर के नाय दैद त्या तया बैठाए तो बिघन लागे कोय जाकर दब से हर सोए कलता ती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सुधा सुख पाओ पो बिन से पूर्ण हो आस भगत पाया तम बरगास तित कर जाय बसे अविनाशी को नानक काटी जम्पासी तत् विचार कह जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ से बाप त्याग शरण गुर देवे और रथ जन्म का हो उदार हर सिमर प्राण आधार अनक भावना छुट नारे सिमरत सात भेद विचारे हर के पग करो मन लाए मन मच्छन नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटा मैं मूर्ख मना सो तुम्हें कुटम बार बिनता इंते कहो हो तुम कमन सुना था राज रंग में अभिचार इंते कहो कमन छुटकारा सब सिरा ससवारी झूठा ढम छूट बस सारी जिन दिए तस्बुझे ना बिगाना ना विचार ना ने पुछा ना गुर की मतू ले आने भगत बना बडू बेचाने हर की भगत करो मन मीर निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के खिल भगत जाहे आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कैत रहत गत पाव सार भो सतर को नाम सह सवाय नान गुण गाओ गुण गाव तरियो तिर समैल बिन जाय हो मैं बिख फैल होय चंद बसे सुगनाल सास करा सर नाम समाल छाड़ सियानम सगली मना सा संग पावे सच तन हर पुंजी संच करहो व्यवहार यहाँ सुधर गया जय का सर्व निरंतर एको देखो नान जाके मैं सगले के को जापे को सला एक सिमर एको मन आ है एक के गुण गाओ अनंत मंथन जापे के भगवंत एको एक कार्य पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनेक विचार एक तय एक रात प्राचत गए मंत्र अंतर एक प्रभ रहता गुर प्रथा नानक जाता स्वरोग फेरत

छिदर लगत को केस जय ज्योत स्वरूप ज्योत संग समावै तक सूखा मंत्र बतावै कण क्रामन करने हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे बरबीन तै बेद कतेव कहा को चीन जब अपने आप आपर धार है तब सगन सन कहा विचार है जय अपन उच अपना बनेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रह बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अछल अछेद अपे सुमाया वहां किसे व्यापत माया आप को आप या देश तगुण का नाही परवेश जय एक है एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपन आप आपतियारा तय कौन कत कौन सुनने हारा बो बंत उचते उचा नानक आपस को आप है पहुचा जय आप रच प्रपंच आकार चंग गुण में किनो बिस्ता पापनता पहि कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग वंशावत आल जल माया जंजाल हो मैं मो परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखा है खेल संकोचै तो नानक कह जय भगत भगत जय पसरा पसार संत प्रताप दो पाका आप है तनि उनकी शोभा नह बनी आपे कौत कर आनंद चोज आपे रस भोज निर्जोग जिस पावे तसे अपन नाय लावे जिस पावे तस खेल खिलावे बेस मारा था गंत तोला द्यों बलावो त्यों नानक दास बोला सुलो।

सब उपरोध कृपाल अपने कर्तव्य जाने आ पंदर धामे रहो व्यापृत पाला जी अनुभव पा जो जो रचियो सो तिसह त्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करैर के गुण गाए मन तर विश्वास कर मान्य कर नहर नानक खजान्या जन लागार कहलाए जिसकी आसन बिथ जाए सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाए से ऊपर नहीं विचार जंके मन बचे निरंकार बंधन तुर पै निर्वैर अंदर पूजह गुर के पैर ए लोक सुखिय पर लोक सुहेले नानक प्रवापे मेले सत्संग मिल करो नन गुण गावो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत बचन हर के गुण